पाए जुगा जुगंतर काही काहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसे वे परवाहो सच साहेब सच नाए पाकिया पाव अपार अके मंगे ते दे तात करे तातार फिर के अगे रखिए चुत तसे तरपार महाओ के बोलन बोलिए चुत संतरे प्यार अमृत वेला सचना वगिए ही विचार करमी आवे कपड़ नरी मुख द्वार नानक वे जानिए सब पे सचियार थापिया न चाय कीता ना होए आपे आपन रिंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक काव्ये गुण नतान काव्ये सुनिए मन रखिया पाओ दुख पर हस कल जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहे समाए गुर ईश्वर गुर गोरख परमा गुर

तावत् न पुच्छे के कीट अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंति अगंते ते हा कोई न सजे जेठस गुण खोए करे सुनिया सित पिय सुरनाथ सुनिया दरत दरत बालकास सुनिए दीप लोआ पाताल सुनिए पोय न सके काल नानक भगत सदा विकास सुनिए दुख पाप खनास सुनिय ईश्वर ब्रह्म इंद सुनिय मुक्सलाहन मंद सुनिय जग जगत तंपेद सुनिय शास्त्र सिमृत वेद नानक भगत सदा विकास सुनिय दुख पाप खनास सुनिय सत संत ज्ञान सुनिय असत का इष्णान सुनिय पर पावे मान सुनिय लागे सहज ध्यान नानक भगत सदा विकास सुनिय दुख पाप खनास सुनिय सरागना के कहा सुनिय सेक पीर पाचा सुनिय अंधे पावे राहो सुनिय हत वे सकाहो नानक भगत सदा विकास सुनिय दुख पाप खनास सुनिय की मन की गत कही न जाए जेको कहे पिछे पुचताए कागर कलम न लिखन हार मन का पह करन विचार आसन नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन खोए मन सुर होवे मन बद मन सकप बन की सद मन मोचो तवान काए मन जाम के साथ न जाए आसन नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन खोए मन मग टक न पाए मन पाचस्य पगट जाए मने मगन चले पंत मने तरम सिद्धि सरबंध आसा नाम निरंजन होए जे का मन जाने मन खोए मने पावे मुक्त द्वार मने परवर सदार मने तरे तारे कृषक मने नानक पवे नापिक आसा नाम निरंजन होए जे का मन जाने मन खोए पंच प्रवान पंच प्रदान पंचे पावे तरगे मान पंच सोहे तारा जान पंच खागर हेक ध्यान जे को कहे कर विचार कते के कण नहीं समार दाल धर्म दे आखा पूत संतोख था पुर किया जिन सूत जे को पुजे होवे सुचियार तवले ऊपर के तपार दरती होर परे होर चिस्ते पार तले कवन जोर जियो जात रंगा के नाम सबना लिखिय बड़ी कलाम एहो लेका लिख जाने खोए लेका लिखिय केता होए सॉरी केता तान साले रूप खेती दा जाने कांकूत कीत पसाओ एको कवाओ तिसते होए लक दिदियाओ कुदत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार ज्योतिर पावे सही पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख थप थाओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे अतास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख तातार असंख सूरमो पाकसार असंख मन वाला हेता कुरित कवन कहा बीचा वारिया न जावा एक बार ज्योतिर पावे साई पलिका तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख हंत कोर असंख चोर राम खोर असंख अमर कर चाहे चोर असंख कल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर चाहे असंख खुड़िया खड़े फिराहे असंख मलेच मल पक सा खाहे असंख निंदक सिर करे पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक बार जो तिर पावे साई पलीखा तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लोआ असंख खेहे सिर पार होए आखरी नाम आखरी सलाह आखरी ज्ञान गीत गुण गा आखरी लिखण बोलण पाण आखर शिव संजो

आसन लोए लोए पंडा जो किच पाय सो एक वार कर कर वे के सृजनहार नानक सचे की साची कार।

चल कौमी पिखे अंसियो काहे रचियो निमक न होए उदास को नानक बज हर मना परे न जमकी पास तर न पोइयो ही गायो लियो चरातन जी को नानक बज हर मना और चात है पीत पिरज पेओ सुचन ही काल पूछियो हान को नानक निर्बावरे क्यों ना बजे भगवान।

जो सुपना अर पेकना ऐसे जग को जान इन में कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निसि

पास जतन बहुत मैं कर रही हो मिट्टियो नमन को मान दुर्लभ मन दुर्लभ

तेरों नहीं नानक कहो बिखान गर्भ करते देखो बिन से चिन्मय मीत जे प्राणी हर जस गयो नानक ते जग जीत जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक सच्ची मान एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहे मन जैसे सुकुर सुवान नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह हो जियो सदा सुवान सजत नहीं निंद नानक एबग हर बजो एक मन हो एक चित तीरथ परत अरदान कर मन में दारे गुमान नानक ने फल जात दे जियो कुंशर इशनान सिर घम पियो पग डंग मंगे नैन जोत देहीन को नानक ए बिद भई थियो नो हर रसलीन निज कर दे क्यों जगत मैं को काहू को ना है नानक तेर भगत है तेरा को मन माहे जग रचना

कुछ नहीं सपने जियो संसार चिंता था कि कीजिया जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक तीर नहीं कोए चोप जियो।

शिवरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग भैरो वे करही पंचरागिनी संग उचरही प्रथम भैर विबलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असले की बेपारी ए भैरो की पांचो नारी पंचम हर

हस्त पुनीत होए तत्काल, बिनस जाए माया जंजाल। रसना रखो राम गुण नीत, सुख पाव हो मेरे भाई मीत। हस्त पुनीत होए तत्काल, बिनस जाए माया जंजाल। रसना रमो राम गुण नीत, सुख पावो मेरे भाई मीत। लिख लिखेन कागद मसा

हरे गावन तुदनो पवन पणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चितकुपत लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया आदर नाले गावे तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो सद विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनी आमन मोहन सुरख मच प्याले गावन तुदनो रतन पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सुर गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंड कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पवन रत तेरे भगत रसाले और केते तुदनो गावन से मैं चितनावन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई हैप्पी होसी जाय न जासे रचना जिंद रचाई रंगी रंगी पहाती कर कर जन से माया जन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष जी वड्याई ज्योतिष पावे सोई कर सी फिर हुक्म न कर ना जाई सो पत साहो सहा पत साहिब नानक रहने जाए असा महला पहला सुन वड़ा कह सब कोए के वड़ वड़ा डीटा होए कीमत पाए ना कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े मेरे साहेबा गहिर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चिरा रहा हूं सब सुरति मिले सुरत कमाए सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कहन न जाए तेरे तिल वडे आई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा क्या वडे आईया तुद विन सिद्धि के नै न पाया करम मिला नहीं ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सुफती परे तेरे पंडारा जो तू दह तो सहके अच्छा रा नानक सच विसारण हारा नानक सच सवारण हारा असम हला पहला आखा जीव विसर मर जाओ आखन औखा साचा नाओ सच नम की लागे भूख उत भूख है खाए चले दुख सो क्यों विसर मेरी माए सच साहेब सच नाय रहा सच नम की तिल वड़े आई आख तके की मत नहीं पाई जैसे मिल के अख न पाहे वड न होवे काट न जाए ना होमर न होवे सोग देंद न है न चुके पोग गुण होर ना ही कोय ना को हुआ ना को होए जे वड़ा तिवट तेरी दात जिंद ने करके कीती रात खसम सरह तेकम जात नानक नावे बाज सनात राग उजनी महला चोतम हर के जन सतगुरु सत पुरखा बिनो करो गुरु पास हम कीर के रम सतगुरु सरनाय कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोख राम नाम परगास गुरमत नाम र प्राण सखाय हर कीरथ मरी रह रास रहाओ हर जन के वड़ पाग वडेर जन हर हर सरधा हर प्यास हर हर नाम लय तृपतास मिल संगत गुण परगास जन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीव त्रिग जीवास जन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखा लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग जुरी महला पंजवन काहे रे मन छितव उदम ज आहर हर जियो परिया सैल्प तरम है जंत उपाय ताकार जक्या गह कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कष्ट हरिया रहा चरण पताल के सुत बनिता कोई ना किसकी तरिया सुर सुर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पव करिया उड़ उड़ा वैस को सत से पच्छे बचरे छरिया तिन कवन खलावे खवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सबने दान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जय तेरा अंतन पारा वरिया रागा समहला चोता सो पुरख एकोंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुद जी हर सचे सिर जनहारा सब जिया तुम्हारे जी तू जिया कादा तारा सब त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा
हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी खनक जंत विछाड़ा तू घट घट अंतर सरवन रंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे छोज बढ़ाना तू आपे दाता आपे भूता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पर ब्रह्म बेअंत बेअंत जिंड तेरे क्या गुण आख वखाना तुसे वे जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुद जी से झंझुग मह सुखवासी समुकत समुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तुट्टी जमकी फांसी जिन नर पा तिन हर नर पा त्याया जी तिन का पो साब गवासी जिन से व्या जो सेवे तुद मरह जीते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जिन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे भी अंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक हड़ है पड़ पूजा जी तप है जप है बेअंता तेरे अनेक मड़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे बुढ़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू चल करता सोई तुद आपे सृष्ट सब पवे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुद आपे सृष्ट सब पाए जी तुद आपे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानो आसा महला पछोता तू करता सचार मैडा साई जो तो पावे सोई तीसी जो तू दह सोई हो पाई राम सब तेरी तू सब नीत आया जिसनो कृपा कर है तेरे नाम रतन पाया गुरमुख लादा मुख वाया आप छोड़या आप मिलाया तू दरिया सब तुझे ही माँ है तुझ बिन दूजा कोई ना है तुझ बिन दूजा ना ही तुद बिन दूजा कोई ना है जिया जन सब तेरा खेल विजोग में बिछोड़या संजोगी मैं जिसना तू जान आए सोई जन जाने हर गुण सदा ही आख वखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर विख जाने सोए चरण नानक गुरमुख प्रगट होए असमहला पहला तित सर्वरड़े पैल निवासा पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहि छल हम देखते डूबियाले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जंतु नाही विसरिया असा महला पंजवा पाई परापत मन खुद होरिया गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया अवर काज तेरे कित न काम मिल सद संगत पिछ केवल नाम सरन जाम लाग पव जल तन के जन्म मृत जात रंग माया कह रहा जब तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कह नानक मनीष कर्मा सुन पर की राखो शर्मा एक ओंकार सत श्री वाहेगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेंती छो पई हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की अच्छा तब चरणन